0: नाचते से लगी हम रखे से लगी चले कटवान जाओ महाराज हमारे दिल के से लगी थोड़ी गली कटवा मैं लनिया के बटुआ ओ तो फनवा चबावे इन रात हमारे दिल के से लगी
1: Chumza, I'm waking the neighbors up in here, Kim now.
2: Listen. Another hit song makes me want to dance. Lotus FM.

0: कवाली नगमों का ये प्रोग्राम लोटस एफएम के महकते हुए गुलशन से नशर किया जा रहा है। मैं आपका मेहसबान हूँ और खाकसार को इबी महमूद कहते हैं।
1: तस्लीम आदाब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू एंड ए वेरी गुड इवनिंग टू कवाली लवर्स आउट लोटस लैंड। कवाली नगमों का यह प्रोग्राम लोटस एफएम के महकते हुए गुलशन से नशर किया जा रहा है। मैं आपका बागबान हूँ और खाकसार को इबी महमूद कहते हैं। तो लीजिए प्रोग्राम का आगाज रईस अनीस साबरी की आवाज़ से करते हैं।

साबिरी नहीं है जो किसी से मांगता हो। यस सरकार, साबिर पाक अली रहमा की बेकसमना में काशिफ अली और उनके हमनवा उस कलाम को पेश कर रहे थे। शुक्रिया भाई यासीन लतीफ और पीटर मैनेजबर्ग। यस यासीन लतीफ एंड रहमतुल्ला साबली केपटन के रहने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया रहमतुल्लाह। एंड ऑफ कोर्स आवर रिकी नाइट आवल वसंती इंद्रानी कानेगी ऑल आवर रेगुलर्स। शुक्रिया टू एवरी वन ऑफ यू दैट हैव ट्यून्ड इन एंड ऑफ कोर्स लिसन टू the Qawwali Hour. We have one more community announcement. We have the Mumbai and the Baksan and the Sheikh families together with the Heavenside Sunni Jamaat Chishti Sabri Zikr Group. They invite you to the 51st Milad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam program and also the Urus Sharif of various Awliya Allah. And this will take place at the Heavenside Community Hall, that's Unit 1 in Heavenside, Chatsworth, Saturday, 26 September. The program commences after Salat al-Isha. Saturday, 26 September, program after Salat al-Isha, Mehfil al-Sama by leading artists. Sunday, the program commences at 10 a.m. Nath Mankabat, lecture by leading scholars. Niaz Langar will be served. Remember, it's the Heavenside Sunni Jamaat, the Mumbai, Baksan and Sheikh family that invite you to the Milad Rasul Arabi program and Urus Mubarak of various Awliya Allah to take place at the Community Hall in Unit 1, 27th of September. And we will give you more information as we get closer to the date, inshallah Aziz. And then, of course, we have Janab Faisal Adam Ali, Kalandar Ali Sahab. Shukriya Bhai Sahab, ye mohabbat hai aapki, alhamdulillah. Another one of my ardent listeners who really loves his Qawwali, this man. Join me, Ibn Mahmood, every Sunday evenings at 9 p.m. for the best in local and international Qawwali songs and music. जी हाँ, बीबी महमूद के साथ हैं और वक्त बड़े तेजी से गुजर रही है। अब अलविदा कहने का वक्त भी आ चुका है। रही जिंदगी तो फिर बातें होंगी, ना रही जिंदगी तो बस यादें होंगी। वैसे तो जिंदगी को संभाल के रखना जिंदगी मौत की अमानत है। वील कैच अप विद यू ऑन वेंसडे इवनिंग विद गुलदस्ता 6 PM एंड ऑफ कोर्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग ऑल ऑफ यू एट द मालिक मुर्तजा मिलाद ऑन द 5th एंड द 6th ऑफ सितंबर एट द अल्पाइन रोड ग्राउंड। आई एम बी प्लेइंग off with Nazir Ejaz Marhum's presentation of a kalam on Sarkar Sabir Pak Alayhi Rahma. Fi Amanillah, Khuda Hafiz.